वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। सो यशोदा माता शी डिडंट वांट टू रिब्यूक एंड स्कोल्ड हर सन्स, हर सन रादर। शी लव्ड हिम सो मच, ही लुक्स सो इनोसेंट, हाउ कैन आई पनिश हिम। श्री सुग्रीव मुनि goes on and tells us about another incident which brought out a mystery of that Supreme Lord and Master.

एक समय बल भद्रादिक गोपियों के बालकों में खीरा कर रहे थे, वहां श्री कृष्ण चंद्र मिट्टी खाने लगे। तब सब बालकों ने कहा, आज कृष्ण को कृष्ण की माता से पिटवाएंगे और जाकर यह कहेंगे कि आज शाम सुंदर ने मिट्टी खाई है। तब यह विचार कर सब बालक और श्री दामा यशोदा जी के पास गए और जाकर कहा कि आज श्री कृष्ण मिट्टी खाई है। So one day while at play, cowherd boys led by Balaram ji, they came and complained to Yashoda Mata. Yashoda Ma, Krishna eat dirt, mitti, earth.

परम हित की करने वाली श्री कृष्ण की माता यशोदा ने क्रोधित हो कृष्ण श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर धमकाया और भययुक्त चंचल नेत्र मोहन प्यारे से यह कहा, हे चपलघात चंचल, तूने एकले जाकर मिट्टी क्यों खाई? अरे अन्यायी, जो यह बात गांव के लोग सुनेंगे तो घर घर यह जवाब होगा कि नंद रानी ऐसी जड़ कंजूस है कि अपने बालकों को पेट भर रोटी भी नहीं देती, इसलिए वह मिट्टी खा खा कर दिन पूरे करती है। यह बात सुनकर श्याम सुंदर डरते कांपते बोले कि ए माता, यह झूठ बात तुझसे किसने कही? कराचित कोई बालक तेरे पास जाकर मुझको झूठा कलंक लगा देते हो, उसमें मेरा क्या अपराध है? तब यशोदा ने कहा कि तेरे मित्र श्री दामा ने मुझसे कही है और तेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ ने भी कही है। सो कृष्ण भगवान इज मोर हेल्ड इन माय ध्यान व्हेन शी गॉट दैट न्यूज दैट ही हैड ईटन डर्ट। शी स्टार्टेड टू रिब्यूक हिम अ बिट, क्वारल विद हिम, व्हाई डिड यू ईट डर्ट? कृष्ण भगवान ही लुकिंग लाइक ही कंफ्यूज, व्हाट अबाउट ईटन डर्ट? मां, I didn't eat dirt. Why you eat dirt? Balaram will not lie. All your friends will not lie on you. These are your playmates. These are your friends. And they are saying to me that you ate dirt. Why did you eat dirt? Krishna said, Ma, me eat no dirt. They are lying. They are not being truthful, O Ma. I didn't eat any dirt. हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई और श्री दामा की ओर के ओर को कड़ी दृष्टि से देखकर बोले, क्यों रे श्री दामा, मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खाया था? बलराम, व्हेन डिड यू सी मी डर्ट? व्हाई आर यू टेलिंग लाइज ऑन मी? So Bhagwan Krishna, he's trying to defend himself, he didn't eat dirt. So then his mother said, so you didn't eat no dirt? He said, no ma, I didn't eat no dirt. Yashoda yah baat sun anek dekho ke dur karne wale akhand Aishwaryan Bhagwan krida karne ke liye manuj jatanu dhari बालक रूप की श्री कृष्ण चंद्र ने अपना मुखारविंद फैलाकर यशोदा को दिखला दिया। यू डिडंट ईट नो डर्ट, लेट मी सी योर माउथ, ओपन योर माउथ, लेट मी सी। एंड कृष्ण भगवान ओपन हिज माउथ, दैट इज ऑल ही वाज वेटिंग फॉर हिज मदर टू टेल हिम हिज ओपन हिज माउथ। You saying you didn't eat? Well, open your mouth, let me see. Krishna Bhagwan opened his mouth. And friends, what did Mother Yashoda see? Tab Yashoda ji ne Shri Krishna ke mukh mein sthavar, jangam, vishwa, antariksh, disha, parvat, dweep, samudra, भूगोल, प्रवाह, वायु, अग्नि, चंद्रमा, तारागण, ज्योतिषक, जल, तेज, आकाश, इंद्रियों के देवता, इंद्रिय, मन, शब्दादि और इनके विपय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों। शी इज सीइंग इनसाइड द माउथ ऑफ कृष्ण भगवान।

हे भगवान मैं अब तुम्हारी शरण हूँ. बिफोर शी फॉरगॉट एवरीथिंग शी स्टार्टेड टू प्रे टू द लॉर्ड, प्रभु आई सीक योर शेल्टर, आई सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम यू, मैं अब तुम्हारी शरण हूँ. इस प्रकार यशोदा जी को कृष्ण में जब ईश्वर की बुद्धि हो गई तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि माता तो परम गति को पहुंच गई, अब मेरा लालन पालन कौन करेगा. तब पुत्र ने फिर स्नेह रूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदा पर फैला दी. इस समय यशोदा जी ने मन में कृष्णचंद्र की ईश्वर बुद्धि अलग कर दी और पुत्र भाव, पुत्र प्रभाव मानकर श्री कृष्ण को गोद में बैठा प्रेम से मग्न होकर पहले के समान वात्सल्य भाव करने लगी. ऋग यजु साम ये तीनों वेद सांख्य योग समस्त निरंतर जिन वासुदेव भगवान की महिमा को रात दिन गाते हैं उन श्री कृष्ण को यशोदा पुत्र भाव से मानती है. श्री सुखदेव मुनि महाराज ही कंटिन्यूज एंड ही एक्सप्लेन टू राजा परीक्षित, ओ किंग, सच वॉज द सिचुएशन विथ दिस रेवलेशन ऑफ भगवान कृष्ण टू हिज मदर यशोदा. He talked about, you know, the Vedas, the Upanishads, the different types of yoga, Sankhya Yoga, etc. All the different systems in Sanatana Dharma, according to our scriptures. All these were revealed to her and she realized that her son was none other than Supreme Lord and Master himself. So, Raja Parikshit will ask questions as to how it is Yashoda and Nanda Raj, they were so blessed to have this opportunity to have that Supreme Lord and Master manifest as their son. And so Raja Parikshit would explain, Shukdev Muni would explain to Raja Parikshit how it is both Yashoda and Nandaraj, who they were in previous Janmas. And it was told to them that when they come in Gokula, they would be blessed to have the Supreme Lord and Master come as their son.

एक बार वो श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर राम चंद्र की जय, आर शक्ति जगदम्बा माता की जय, सर्व देवता सर्व देवी की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की सकल पंच की जय जय।

राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, पांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में नाद उसी का पम पम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय।

शांत नित्य अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य व्यापक एवं समर्थ जगत के ईश्वर देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले हरि करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम नाम वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हिम आई एडोर द पैशनलेस द इटर्नल बियॉन्ड द ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ कॉग्निशन द सिनलेस द बिस्टोअर ऑफ द पीस ऑफ फाइनल लिबरेशन हु इज कंटिन्यूअली वर्शिप बाई ब्रह्मा Shiva and Shesh, noble by Vedanta, omnipresent, the sovereign of the world, the preceptor of the gods, Hari himself in the

हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं सच्चे मन से विनय करता हूँ, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले सर्व ज्ञाता हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में कोई दूसरा इच्छा नहीं है। हे रघुनाथ, मुझे अखंडित भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन को काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि दोषों से रहित कीजिए। ओ रघुपति, आई डिक्लेयर द ट्रूथ एंड यू टू नो द इनमोस्ट सीक्रेट्स ऑफ ऑल, दैट देयर इज नो अदर क्रेविंग इन माई हार्ट बट दैट यू शुड ग्रांट मी परफेक्ट डिवोशन। ओ क्रेस्ट ज्वेल ऑफ द रघुज लाइन एंड मेक माई हार्ट क्लीन ऑफ लस्ट एंड एवरी अदर सिन। रामायण कथा का परिचय। इस कथा का विवरण सुंदरकांड से लिया गया है और इसका संबंध भगवान राम और विभीषण के मिलाप से है। दुष्ट रावण के देश निकाला देने के बाद विभीषण, जिसे महाज्ञानी वाल्मीकि ने धर्मात्मा और सद्गुणी कहा है, ने दयाशील प्रभु में शरण ली। विभीषण के महासागर के दूसरे तट पर पहुंचते ही सुग्रीव, अंगद और हनुमान ने बड़े आदर सहित उनको स्नेहपूर्ण प्रभु के दर्शन कराए। इस प्रकार श्री राम की छवि को निहारते हुए संत तुलसीदास ने विभीषण के जीवन के उन क्षणों को याद किया। इंट्रोडक्शन टू रामायण कथा। This katha or narrative is taken from Sundar Kand and relates to the meeting of Vibhishan with Lord Rama. After he had been banished from Lanka by his elder brother, the evil-minded Ravana, Vibhishan, whom the sage Valmiki refers to as Dharmatma or the virtuous, sought refuge in the all-merciful Lord. Upon his arrival on the other shore of the ocean, Vibhishan was respectfully escorted by Sugriv, Angad and Hanuman into the presence of the affectionate Lord. This is how Saint Tulsidas recounts that defining moment in the life of Vibhishan as he marveled at the sight of Sri Rama.

फिर सौंदर्य के धाम श्री राम को देखकर वे पलक तक झपकाना भूल गए और टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहे। भगवान की भुजाएं विशाल हैं, लाल कमल से कमान आँखें हैं और शरण में आए हुए का भय दूर करने वाला सांवला शरीर है। When his eyes

सिंह के कंधे के समान पुष्ट कंधे और सुंदर चौड़ी छाती है तथा मुख कमल असंख्य कामदेवों के मन को ही मोहित करने वाला है। भगवान का दर्शन कर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और देह अत्यंत रोमांचित हो उठी। तब मन में धैर्य रख कर उन्होंने सुंदर कोमल वचन कहे। Vibhishan saw the Lord in all his resplendent glory, possessing lion-like shoulders and a broad chest capable of subduing his foes. And the Lord's charming face ravished the soul of countless cupids. The marvelous sight brought tears to the eyes of Vibhishan, and a deep thrill ran through his body. With streaming eyes and trembling limbs, Vibhishan, who was established in dharma or eternal wisdom, composed himself and began to speak in gentle tones.

हे नाथ, मैं 10 मुंह वाले रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है। मेरी देह तामसी है, इस कारण स्वभाव से ही तामस कर्म मुझे वैसे ही प्यारा लगता है जिस तरह उल्लुओं को अंधेरा प्रिया लगता है। विभीषण हम्बली सबमिटेड, ओ लॉर्ड, आई एम द ब्रदर ऑफ रावण, ओ प्रोटेक्टर ऑफ गॉड्स, आई हैव बीन बोर्न इन द डीमन रेस विद ए सैवेज टेम्परामेंट एंड ए तामसिक बॉडी। That is one that is full of inertia and ignorance. I am naturally prone to evil as an owl is partial to darkness. Vibhishan, who was ever established in Dharma, knew that even men born of sinful wombs can attain the supreme state of salvation if they cultivate devotion to the all-merciful Lord. He therefore surrendered to Sri Rama.

छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने समीप बैठा लिया। भक्तों का भय हरण करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित आप अपना कुशल मंगल सुनाओ। तुम तो बड़ी कठिन जगह पर रहते हो। श्री रामस यंगर ब्रदर लक्ष्मण आल्सो एम्ब्रेस्ड विभीषण एंड दे सीटेड हिम बिसाइड देम। Lord Rama then spoke pleasing words that dispelled the fear of his devotee. O King of Lanka, tell me, is all well with you and your family, placed as you are in vicious surroundings? How the Lord reacts when the soul surrenders unto him is depicted by the words and actions of Sri Rama when Vibhishan approached him for protection. The conduct of Sri Ram proves beyond doubt how our prayer at the feet of the Lord for forgiving all our transgressions never goes unrewarded.

की मंडली के बीच निवास करते हो। ऐसी स्थिति में हे मित्र, तुम अपने धर्म का किस प्रकार पालन करते हो? मुझे तुम्हारे समस्त आचार विचारों के बारे में जानकारी है। तुम अत्यंत नीतिज्ञ हो, तुम्हें अन्याय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्री रामा से विभीषण, योर होम इज इन एन ईवल एनवायरमेंट, हाउ माई फ्रेंड वेर यू एबल टू मेंटेन योर डिवोशन एंड डेडिकेशन टू गॉड इन द मिडस्ट ऑफ सो मेनी विकेड मैन। I am completely aware of the saintly conduct of your life, your excellence in virtue, and your aversion to evil. The great qualities of Sri Rama come to light on this occasion. Firstly, his omniscience, and secondly, his infinite compassion for his devotees.

हेतात कहा गया है। विधाता नरक में भले ही भेज दे पर जीवन में दुष्टों का साथ कभी ना दे। तब विभीषण ने कहा, अब मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। श्री राम कंटिन्यूज, ओ डियर वन, मे प्रोविडेंस कीप अस अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ द विकिड। इट इज मच बेटर टू लिव इन हेल। विभीषण रिप्लाइड, माय डियर लॉर्ड, आफ्टर हैविंग द डिवाइन ग्लिम्प्स ऑफ योर लोटस फीट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग फॉर एनीवन्स वेलफेयर। The very glimpse has made me glorified, sanctified, and purified for all times to come. I am well since you have shown mercy on me and recognized me as your humble devotee. It is said that when a devotee takes refuge in the Lord, he has no affinity with prakriti or matter, and the Lord's nature descends upon him.

0: जीव की कुशल तब तक नहीं और ना स्वप्न में भी उसे शांति है जब तक वह शोक के घर के काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। विभीषण सेज देयर कैन बी नो हैप्पीनेस फॉर ए क्रीचर नॉर कैन हिज माइंड नो एनी पीस इवन इन ए ड्रीम सो लॉन्ग एज ही डज नॉट रिलिंक्विश डिजायर विच इज द अबोर्ड ऑफ सोरो एंड अडोर श्री रामा। As stated in the Gita, spiritual knowledge is concealed by the eternal enemy of the wise, known as desire, which is insatiable like fire.
1: Inspiring, enlightening, and entertaining. This is Radio Jagriti 102.7 FM's Overnight Mix.

ममता तो पूरी अंधेरी रात के समान है, जो राग द्वेष रूपी उल्मों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक प्राणियों के मन में घर किए रहती है, जब तक कि उन प्राणियों के हृदय में भगवान का प्रताप रूपी सूर्य नहीं उदित होता। विभीषण कंटिन्यूज, अटैचमेंट टू द वर्ल्ड इज लाइक एन इंटेंसली डार्क नाइट विच इज सो डिलाइटफुल टू द ऑल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अवर्जन। Attachment to sense objects abides in the heart of a creature so long as the light of wisdom or the sun of the Lord's glory does not shine there. Here Vibhishan echoes the sentiments of the Gita, wherein the Blessed Lord said, "Go on doing your duty without attachment, for doing work without attachment, man attains the supreme."

हे रामचंद्र जी, आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ। मेरा बहुत बड़ा भय मिट गया। हे प्रभु, आपकी कृपा जिस पर होती है उसे तीनों प्रकार के सांसारिक कष्ट, आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक ताप बिल्कुल नहीं होते। विभीषण एड्रेसेस श्री रामा सेइंग, हैविंग सीन योर लोटस फीट ओ लॉर्ड रामा, आई एम नाउ क्वाइट वेल एंड माई ग्रेव फियर्स हैव बीन डिस्पेल्ड। And here we see the spiritual enlightenment of Vibhishan when he says to Sri Rama, He who gets established in you through

मुझे देखिए, मैं राक्षस हूँ, अत्यंत नीच स्वभाव वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बहुत अच्छा कल्याण कारण आचरण नहीं किया, जिनके रूप का दर्शन बड़े बड़े ऋषि तपस्वी लोगों के ध्यान में भी नहीं आता। उन प्रभु ने कृपा करके स्वयं हर्षित होकर स्वयं मुझे हृदय से लगा लिया। विभीषण कंटिन्यूस, आई एम ए डीमन अटली वाइल ऑफ नेचर and have never observed any pious practices, and yet the Lord has been pleased to embrace me to his heart, displaying his kindness. And Vibhishan once again reveals his supreme knowledge of scriptural injunctions when he compares his good fortune from devotion to Sri Ram as opposed to devotion to the unmanifest. In his profound statement, Vibhishan says, even the sages find it difficult to comprehend the Lord for all their intense meditation.

हे कृपा निधान सुख के सागर प्रभु श्री राम, यह तो मेरा अत्यंत उत्तम भाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित आपके श्री चरण कमलों का आज अपनी आँखों से दर्शन किया। विभीषण सेज, ओ ऑल ग्रेशियस एंड ऑल ब्लिसफुल श्री राम, हाउ ग्रेट इज माई गुड फॉर्चून। I am immensely blessed in that I have beheld with my own eyes the lotus feet of the Lord, which are worthy of adoration even to Brahma and Shiva. Here Vibhishan refers to all aspects of the Supreme Lord, that is the Lord Brahma as creator, the Lord Sri Rama as Vishnu the preserver, and the Lord Shiva as destroyer.

ऐसा साधु पुरुष तो मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करता है जिस प्रकार लोभी के मन में धन का वास होता है। मुझे तो तुम्हारे जैसे संत ही प्यारे हैं। मैं अन्य किसी के अनुरोध पर अवतरित नहीं होता हूँ, अर्थात आप जैसे भक्तों के आग्रह पर ही संसार में देह धारण कर प्रकट होता हूँ। श्री रामा कंटिन्यूज, ए सेंट ऑफ सच डिस्क्रिप्शन अबाइड्स इन माय हार्ट इवन एज मनी रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ ए माइजर। Saints of your type, O Vibhishan, are dear to me, and it is for the sake of none else do I take incarnation or body myself forth. In this case, for the destruction of the wicked Ravana and for the protection of the virtuous Vibhishan.

जो नाम रूप लीलाधारी मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, आजीवन दूसरों के कल्याण में ही लगते रहते हैं, अपनी नीति और सत्य प्रतिज्ञाओं के नियमों से कभी विचलित नहीं होते, और जिन्हें विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, वे मनुष्य मुझे प्राण के समान प्रिया है। दिस कथा कंक्लूड्स विद ए क्लारियन डिक्लेरेशन बाय श्री रामा फॉर द अटेनमेंट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। Those who worship my personal form and devote their lives to the service of others, who firmly tread the path of righteousness, who are strict in pious observances, who love and revere the feet of the enlightened souls, such people are dear to me as my very own life.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति. The six stanzas on salvation.

नमः शिवाय। ओम हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सयापति रामचंद्र की जय हो। भक्त ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड प्रिपेयर फॉर आरती। फॉर लॉग्ड इन प्लीज डू आरती एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू। भगवान वांट्स टू ब्लेस यू। प्लीज लेट भगवान ब्लेस यू।

की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की डनव जय जय सीताराम। आप लोग का नाम देखते हैं श्री राम, जय राम, जय जय राम।

एक बार बोलसुर वृंदावन कृष्ण चंद्र के जय आरती का समय फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर आरती। वी इनवाइट दोज हु आर वेल इनफ टू प्लीज स्टैंड एंड जॉइन विद अस।

एक बाबुल श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र के जय। सो फ्रेंड्स टुनाइट वी गो वी टेक कथा फ्रॉम त्रयोदशो अध्याय। आज भगवान कृष्ण कंटिन्यूज टू परफॉर्म हिज मेनी लीड